0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: 150th ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு வந்தே மாதரம்.

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: 150வது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு வந்தே மாதரம்.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: இஸ் ஆகாஷ்வாணி. தி நியூஸ் ரெட் பை விசி பிரமோத். இந்தியா அண்ட் இட்லி ஹவ் டிசைடட் டு எலிவேட் தி பைலேட்ரல் டைஸ் டு அ ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரெட்டிஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் என்ஹான்ஸ் கோஆபரேஷன் இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் ட்ரேட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் நியூ டெக்னாலஜிஸ். பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி மேட் தி அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஃபாலோவிங் டெலிகேஷன் லெவல் டாக் வித் இஸ் இட்டாலியன் கவுண்டர் பார்ட் ஜோர்ஜியா மெலனி இன் ரோம் டுடே. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: Pichle lagbhag 3.5 varshon mein mujhe kai baar Prime Minister Meloni se milne ka avsar mila hai. Yeh Bharat aur Italy ke beech kareebi sahyog aur samanjasya ko darshata hai. Unke netrutva mein hamare sambandhon ko nayi gati, nayi disha और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
0: Mr. Modi also said both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing

0: पर काम करेंगे।
1: मिस्टर मोदी स्ट्रेस दैट इंडिया एंड इटली आर यूनाइटेड इन व्यूइंग टेररिज्म एज अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एंड अंडरलाइन द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क्स।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella